0: कोलगेट मैक्स फ्रेश मिन्त्रा भगाओ ताजगी जगाओ।
1: बाजे देखि नातिसम्म पाइन मैले कुनै खोट, त्यसैले भने जस्तो गहना किन्न जाउँ है रूपाको।
2: टाइम चेक।
3: यति बेला बिहानको 8 बजेको छ।
4: यस टाइम चेक का प्रायोजक रूपाकोट ज्योति सुनचारी दुकान महेन्द्र पुल पोखरा।
5: किन्नुस अब ढुक्कले सुनका गहना, गए अब रसायन केडियम राख्ने समय।

0: पद्मश्री हस्पिटल एण्ड अलाइड साइन्सेस प्राली न्यूरल पोखराले विभिन्न प्रकारका विशेषज्ञ सेवाहरू प्रदान गर्दै आइरहेको छ।
1: बाल रोग विशेषज्ञ डाक्टर विनोद तुलाचन, डाक्टर वन्दना श्रेष्ठ,
2: हार जोर्नी तथा नसा रोग विशेषज्ञ डाक्टर यज्ञमान साक्य, डाक्टर प्रवीण थापा, डाक्टर सुभाष गुरुङ,
3: जनरल एण्ड ल्याप्रोस्कोपी सर्जन डाक्टर नरेन्द्र विक्रम गुरुङ, डाक्टर देवेन्द्र श्रेष्ठ,
2: प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ डाक्टर डेला सिंह जोशी, डाक्टर चुम्मया पोन,
1: मुटु रोग विशेषज्ञ डाक्टर तेजबहादुर गुरुङ,
2: क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डाक्टर ऋषि शेरचन, फिजिसियन तथा पेट कलेजो रोग विशेषज्ञ डाक्टर विकास अधिकारी,
1: पेट कलेजो रोग विशेषज्ञ डाक्टर शंकर बराल,
0: युरोलोजिस्ट तथा मृगौला रोग प्रत्यारोपण सर्जन डाक्टर प्रकाश छेत्री, मृगौला रोग विशेषज्ञ डाक्टर जुजुराज श्रेष्ठ, नसा तथा मनोरोग विशेषज्ञ डाक्टर मानकाजी थापा मगर, प्लास्टिक सर्जन डाक्टर पीयूष गिरी, छाला विज्ञान भेनेरियोलोजी तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर अस्मिता वाग्ले, नाक कान घाँटी तथा थायराइड रोग विशेषज्ञ डाक्टर विकास गुरुङ, कन्सल्टेन्ट रेडियोलोजिस्ट डाक्टर मनिष किरण श्रेष्ठ, डाक्टर सुमिरन श्रेष्ठ, कन्सल्टेन्ट एनेस्थेसियोलोजिस्ट डाक्टर भूपेन्द्र कुमार तुलाचन, डाक्टर विशाल गुरुङ, कन्सल्टेन्ट फिजिसियन डाक्टर अनुमल पौडेल,
4: वार्ड आईसीयू एनआईसीयू जनरल एण्ड ल्याप्रोस्कोपी सर्जरी सेवा, पोस्ट अप सेवा, फिजियोथेरापी, इन्डोस्कोपी, क्रोनोस्कोपी, इको, टीएमटी, हल्चर, पीएफटी, युरोफ्लोमेट्री, डायलोसिस सेवा र आँखा उपचार सेवा, 24 घण्टा इमर्जेन्सी सेवा साथै अन्य विशेषज्ञ डाक्टरहरूद्वारा सेवा प्रदान गरिएको जानकारी गराउँदछौ।

0: मम्मी गर्मी भाई के चीसो पिउना
1: पिउना लाई चीसो उठाउ हटे
2: हले गर्मी मनाया से
1: रिफ्रेशमेंट पा न्यूट्रिशन मीट
2: चीसो हले
3: त्रिवी शिक्षण अस्पताल टिचिंग हॉस्पिटल महाराजगंज काठमांडू का वरिष्ठ सुगर थायराइड तथा हार्मोन रोग विशेषज्ञ डाक्टर नरेश पराजुली अब पोखरा में उपचार हुने समस्याहरू सुगर को समस्या गर्भकालीन मधुमेह थायराइड हार्मोन को गड़बड़ी हुने निसंतानपन महीनावारी गड़बड़ी योनिच्छामा कमी हुने महिला को शरीर में अनावश्यक रौं आउने कम उमेरमै प्रेसर मोटोपन कोलेस्ट्रोल बढ़ने उमेर अनुसार शरीर को उचाई नबढ़ी उड़को हुने वा धेरै अग्लो हुने बिरामी जाँच प्रत्येक महीना को दोस्रो शनिवार अर्थात यही जेठ 9 गते शनिवार बिहान 9 बजे देखि दिउँसो 3 बजे सम्म सम्पर्क परिचित मेडिकल हल प्राली परिचित स्वास्थ्य क्लिनिक पोखरा 4 गैरापाटन पालिखेचोक सम्पर्क 98434032929 98028 59321 061 581

0: बाजेदेखि नातिसम्म पाइन मैले कुनै खोट, त्यसैले भने जस्तो गहना किन्न जाऊ है रूपाको।
1: टाइम चेक।
2: यति बेला दिउँसोको 2 बजेको छ।
3: यस टाइम चेक का प्रायोजक रूपाकोट ज्योति सुन चाँदी दुकान महेन्द्र पुल पोखरा।
4: किन्नुहोस् अब ढुक्कले सुनका गहना, गए अब रसायन केडियम राख्ने समय।
5: 93.4
6: Hush, hush, hush, Papa's sleeping.

0: वात्सल्य पोखरा क्लिनिक न्यू रोड पोखरा फर्टिलिटी होपलाइन 01-597-06-11
1: ओहो नासर बे कति छाब डिजाइन बे मारेगा खिनानी खनि तोला
2: खनै दिवा नासर बे रूपाकोट ज्योति सुनचाँदी दुकान महेन्द्र पुलारी तोला
1: ए नै स्याबा मार दोकान पो मोना नै पेसो लाइनी च्याबा चुरा रैया औठी हमेला झोका टस सिग्री हार तान चनै तो हो नि जग मात्र आङी खैमा खैमा समस्या पर्दी र मार चुवल तुई दिस्यानारी बेल्ले छ्याबा कोपिम ओछे
2: हजुर किने झोको लाइनी छाब छाबा छाबा मारे डिजाइन गहना चैदी मिशा वा चुवल तुई दिशा रूपाकोट ज्योति सुनचाँदी दुकान पोखरा महेन्द्र पुलारी खो चु दुकान पोखरा महेन्द्र पुलाई विशाल बजार गेट गलो धिताई पालिखी चोकै याव क्यार मोहै
1: जग मात्र आङी रूपाकोट ज्योति सुनचाँदी दोकाने घी शाखा पोखरा महेन्द्र पुलारी अन्नपूर्ण सुपर मार्केट आडरे मुहै आसुम ल्यादो
2: समुदाय रबा ता क्रिबा ज्याल जाति क्रिबा छतैरा न त खैमा बिलन चन्नै यामो
1: तोई मिल तुई विषया रूपाकोट ज्योति सुनचाँदी दोकान महेन्द्रपुल पोखरा सम्पर्क 061-585-8-15 98-560-35-8-15 प्रोप्राइटर दशरथ सुनार
2: छतैरा त तान मि भिम्द
3: बाजेदेखि नातिसम्म पाइन मैले कुनै खोट त्यसैले भने जस्तो गहना किन्न जाउँ है रूपाकोट।

0: शनिबार अर्थात यही जेठ 9 गते शनिबार बिहान 9 बजे देखि दिउँसो 3 बजे सम्म।
1: सम्पर्क परिचित मेडिकल हल प्राली, परिचित स्वास्थ्य क्लिनिक, पोखरा 4 गैरापाटन, पालिखेचो। सम्पर्क 98434-032-29, 98028-59321, 061-581-871।
2: गोयल मेटल इंडस्ट्रीज को उत्कृष्ट उत्पादन जिंदल एसएस पाइप नेपाल नंबर वन ब्रांड। नक्कली देखि सावधान, जिंदल को लोकप्रियता ले गर्दा नक्कली जिंदल बजार में आएको हुनाले प्लास्टिक में मात्र नभई पाइप में पनि जिंदल लेखेको पाइप मात्र खरीद गर्नु होला। टिकाऊ र गुणस्तरीय काम जिंदल पाइप हो यसको नाम।

अब तपाई रेडियो अन्नपूर्ण 93.4 लन्डनबाट प्रसारण हुने समाचारमूलक प्रस्तुति बीबीसी नेपाली सेवा सुन्नुहुनेछ। Programs on this channel at present.